वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो। सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो, सत्य नाम बोलो, सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो। नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो, नित्य नित्य जपिए।

Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna ji bolo Krishna Krishna Krishna Krishna bol Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna ji bolo Krishna Krishna Krishna नित्य नित्य जपिए कृष्ण नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो बोलो हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो।

0: अतितिष्ठति
1: प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति
0: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतितिष्ठति
1: शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतितिष्ठति शतशश्चैव सहस्रशश्च

शतधा हि समाहितासो सहस्रधाय समिते समाहितासो सहस्रधाय समिते शतशश्चैव सहस्रश्च प्रतितिष्ठति शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतितिष्ठति य एतमग्